0: हंगार।
1: मी दिवी राज्य गाड़ू गयो फिर तुम्हें
2: कोम्मे उमुरका
3: कोम्मे फांतियका
2: कोम्मे गिंतियका दिवे ही राज्य के अड़ो इंहा सतर से 49 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव
3: अड्डी हनुए मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड
4: देर रबीउल आखिर दिवे ही राज्य इस्लाम विदोस

0: हांगहार
1: अंगार दो मेंदुर कोरी इकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तिरी हूं आदि बुद्ध दो होगेरे मेंदम बार गड़ तिरी हूं
0: हांगहार
2: हम एकनी दिवे राज्य क्याडू
3: इल्मी नूरुं हित्तं आरो कुरुवा देदुनियेगे बाज्वेरिकमा मगु दक्का दे
4: तुलहेओ फुदुन तेरी उफावेर दिरुलमका रास्ता फाहे कोते
3: उम्मीदु आकोद्दी एकनिवेरिकं फिलु आदे
4: दिवेहराज्येगे अडु
3: इंहा सतरसेग सालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव
4: अडिहा नुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड

0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস রাওয়া ফাবে লা তাআতা লি আহাদিন ফি মাসিয়াতিল্লাহ ইন্নামাত তাআতু ফিল মারুফ মানে আল্লাহ উরে দেবে এবস কামেগা মিহাকা কিয়ামা বুমে নুবে হামাকাশওয়ারুম কিয়ামা বুমবানি হিও কাঙ্কামুগে
1: ಮೀ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಡು ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಡು ಹೆಗ್ಗಡಿ ಬಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆಣಿಸ್ತೀನಿ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾನಾಮ ದಗುತುಗೆ ಪಂಗಿಯ ಪಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: थुरास थुरास
1: थुरास ए तरीका अहरमेंगे बहा सगाफता आदक आदायगे तेरेगा आद बैवर गंते तके हुरे अडवहालं बेनंता
2: हाँ वारा पेनो
3: दिविराजे गड़ा ट्यून कोला अंगार दो के हावीर फाहिज जहर बुरास दो के हावीर हाथर गड़ पने रहा का अधि आदित दो के हावीर फाहिज जहर हमें कने दिविराजे के आड़ो

0: Munifuhi Filuvadi, Malumat ke Khazana Musanikode, Emme Itubar Kurve Baveria.
1: Gehiraj Jege Adu.
0: Enghas Hatarustek Salis Nue Kilohertz Medium Wave, Artiha Nue Megahertz FM Band.
2: ओबा मेहरी एसटीएमओल गे
3: एसटीएमओल ओबा गोंता
4: ना भी कट्टो एसटीएमओल गे
3: ए हेलो
5: मेहरी एसटीएमओल गे
3: हिन त वेगेम मुळेनी
5: एसटीएमओल इन हा छुपिया विया फारि कुरिम कारन हो दमुगे फुरसत लिपे
3: ए
6: अस्ता ज्योति नसीब लगवाला एसटीएम नी प्रमोशन निमेंदे इन विना लिया फारि को कारन हो दमुगे फुरसत बिहार कुरियदा नी प्रमोशन निमेनी दी है डिसेंबर विनिया
4: ए कोबा गोंता कुति ओलेने
3: एसटीएमओल गे
4: हिन त वेगेम मुळेनी
3: ए नेंगे ता
7: ए प्रोग्राम कुं गिन मालूम मातकें एहुं तेरेना फोर को दिनुमा दिव्य राज्य गाडूं गिनस्तनी अतुके राज्य
8: राज्य के एक ही कंकोड़ताओं का आमुन्नंग अमास कों हिंगा हरकेता कलंड
7: सरकार के एक ही इदारा तो कुंदे खिदमत तंग हो दाने फसे है कोई ता
8: खिदमाई गेजेट का कानूनी गतन शायर को फावा लियुता
9: आवस खड़ी है
7: आम दिनों मुगा कुंभ मीह का बेन वाने मुहिम मालूम आता अतुके राज्य
8: आदित्य बुरा स्वच्छ
7: कुंभ दोहे के हैं दोनों नुआगड़े फाने रहें
8: स्टूडियो ही वगुतो
10: निउले मुंग ओके मंदा सफ़ा तके
8: दुनिया देखे फावा पढ़े थी बार तके
10: इंसाफ के तरादों मरे उम्मीद बदल कर ले शख्सियतों
8: रेगनों के हम ही में कमुगा रहिए तुंगे हाल बिल्लों में नुकमे बड़ेंगों भी कोंबे फ्लेटो
10: रोमिना फारसींग के बढ़ते रसकंता कुड़ा का कुजे सफी कुंडी डरेता
8: ऐ हम ही कने तारीख विवाह के तकिनो
10: ऐ दुनिया के चार्ट बदल कर ले हकीकी हादसा तक
8: ए हादसा तक ए वाहक तवनी नील कोर गया सेरिंग फिशिंग अंदर उसके पर्वत तक हमें पितुरिफा पूरी पोशी को मे होम दुहे के हिंदनु अगर तिरी हो
10: रिपीट अंगार दोगे वेंद्रो एक जहायर
8: अदि होनी दोगे रोसी हगर तिरी हो
10: एंगा सतर से 149 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव अदि 89 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड
8: दिवीरा चिकियाडू

0: होगा, हिदमत हरेंगे को तो का कोदिन फेरा मिसाल का डॉक्टर होंगे को तो गया, नर होंगे को तो गया, दें इंजीनियर होंगे को तो गया। मैं दा तफात की ना दायरा था कि कहीं तो मैं कोरा मिस किया वाय दिन कोदिन फेर ना थी वारा बड़ा हिंग हम जो होंगे तो
1: मुदरिसो नवाम बेनो वादारी वरो ना मिस देवाने में मुहे मुनसे हत की को बात
0: मी दायरा होती यार कुरे इरुगा हमें करने वजीफा के को तो गया हियार कुरुंगा बदलगा अमिल्ला गाँव बिना करूँगा मतवेर हिदमत कमगा देखी इहलास तेरे कमा लोए पाए को मसे के करूँगा अजुम का मिदाय रह कर मतलाश यदि कि तेरे कमाए को मिदाय रह का फैतल साबित करो
1: स्कूल छुट्टी का मिस कर बने कौन का मत तो
0: आम को स्कूल छुट्टी का बड़ा दारने हम आयला ये को बागो तो है दा करूँ तें ये गई तुरा कोरा का मैं आहार फैशन होता टाउन फैशन के कोरिंग टाम तैयार हो मैं बस पाए मसे के तक करे बैन
1: কবাতো মিদাইরা এমএসএ মিহার দেখেন বেনবা দোহাকি
0: মিদাইরা এম মিহার দেখেন বেনবানি দেবে রাজ্যকে তাওলে মি নিজাম কি দুনিয়া কি ফেমর গা বালা গন্না আদি ইনজাম গ তেরে নকুন ক মেদারে কি ইসলামী সাখা আগি দা গমতি গা ফাতলা সাবিত ককিন পুরি সামানি ইলমা হুনারুম ফরি হাম ওয়েফাওয়া কাবিল দারিক ফরি হাকো দেমিস ওয়াগিন দান দোস এম দেখেন বেনবানি
1: আলুগন্ড বেস এদানি মিস গেতি ও মেদু তা ফরি হামমান কম বরং উফা বে জে মিস সা মে গত বদল কলা ওয়াহক দেখম নে
0: মিস সরং উফা বে মিস কে তাজরিবা ইয়া মাউলামাত মি প্রোগ্রাম গা হিসসা করন লেবনি তি আর বড় শুকরিয়া
1: শুকরিয়া মিস মাদ্রাসা কুদিংগে গাড়ি
2: Arugandu namake Hajar Emilia Vint Nihaz, Arugandu Orane Gyasudin International School ga Arugandu Orane Grade 5. Arugandu Madahakkiyan eme ehi tari vedini Arugandu ke bappa.

0: अहंकार।
1: मी दिव्य राज्य गाड़ो फेद्दो में
2: दिवहिंगे अमिल्लवंत कं कुरियरु आदे
3: दिवहिंगे उफेद्दुं तेरिकं दक्कु आदे
2: दिवहिंगे माजीगे मंजरता सिफकोद्दे
3: दिवहिंगे अडु
2: दिवहिराज्येगे अडु
3: एंहा सतरस्ते का सालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव
2: अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
4: सर अपना मगे दे अभी न की विसार जहिपति बेदे मियों एक और कुदेश चेमो तेरे वनी वही वनी दे राहों में तेरे ने अगर एक ने वागो तो के चिती को देती रुड़ी कम साधारण ने तन मेवा या तरुकारी या दारुखाना या अधी रीति वा सामाना दे मच्छन रह रहे र बादी के सामाना मिबुनी राजा तुगे तवाया टट्टा ब्लेंडर तका माइक्रोवेव तो सीवान उराज पाल में कस व्यापारी कोल दम इन में पसे है शॉपिंग मॉल स्टेमो उलमाल ओपन बिलामा राजी स्कूल का फोन हाथे नोए हाथरे सुमे सुमे
5: देर रबीउल आखिर दिव्य राज्य इस्लाम भी दोस्त।

0: Then हमें को ता leaflet तका में brochures तका अधे हास्य को में GST गानों में नो ता गवाय गानों ना गवाय दम गेने वे बदल तका गुले के गल में गे बने रे fact sheets तके एम एक वाड़ कोड को तका किया देने में इस्लाह तकोगा में कोंकाला मैगड़ बदल तके तो में आई एक हाल कंत ते बकोड़ा देंग हमारे आए को मेरा मे टेक्स कानून तक गवाई तक का मे ए आगुले रूलिंग तब से बने रे मिसाल का बाइफारो कानून का लीफ एंगो तक टेक्स तक का फड़ा तक ऐति फहुम वांग उदगो वेदान एम वे मार में बने रे टेक्स रूलिंग तक ए इतुरा ए कॉन्सेप्ट खियाल देन टेक्स तक का फड़ा तक देन ए वे सवाल एंगो ती हम देन मे वेबसाइट को सिनन हे मडाला एफएक्यूस ए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लगे सो मिसाल का इनकम टैक्स सब है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ता बाला लिम फेंडा मे कोंकाल सवाल तक तो आम को टैक्स लगा फरा तुम कोरा मी टेको हा गुड़ी
1: के एम अने कैस ए हन तेरे का गुला लाना अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
1: मी सुहेल देतो आद को बात सुहेल का सवाल की
3: mobile application me duire ko bes gst sumba ende vene nizam me haru nane gaim ko fo warpe me duire ko bes gst sumba me haru de vene eto
1: and so hai
3: so hai saaf ho chuta
2: ad var bad shukriya
1: ad hum waqi velan menge to so hai
2: ad
1: आधे मिगड़ी का अर्गन में कुरे मिगेदनी फाही ही तुम्हें मे प्रोग्राम में अधगा प्रोग्राम का अर्गन में वाहक द काल मो मिदनी मेरा इंदे मुंगन्ना ही तुम्हें इतना कागुले अगर तो दम में अने सुहेल फाहम कुरे भी अने सुं बया
0: सुं बया
1: हाँ एक अन्ना वागुता घुसना ना फिर दे वने फुर्सत है मेरे का किन तो मिलने
0: अदे अलमें सुंगड़ी है मिसाल का मना जीएसटी बयां हो शेल मो मै कम में माह को मै फाइल कोड़ा फड़ाते विज्ञय आमों मै नने एक जहिगे गंगा माह होगा आशाविस वाला धोगे कोडिंग मै बयां हो शेल मा मै नने दें अलमें बयां ए गान होनु खंडाला फाइन ना मै डेडलाइन अलमें एकं विस बदले मेरा कुन बेनु विस गेने में गोत करनो गे तो मै नने के बयां तक एम टेक्स्ट तक का फड़ा तक आमो कं ए बल लिबिगें दे आशाविस तो गे मुद्दते ए बयां तैयार को ए कुड़ियाला ए तैयार वेगें ए बयां होशेला होशेला हे मालगड़ गेते मज के हम वी हाउस कुड़ियाला बयां तैयार कुड़ा फशा ए एम फहु वगो तो मे पोर्टल ला मसले दिमाग कम गे व्यस्त ते कहल मसले दिमाग जाल में अड़े बैक एंड को वसे बबला गन्ना मे बयां त हम सोंगड़ी बदलन ने वाने हम एगे कुड़ी वाने हम बयां त होशालो ए तो फैसला उस तक
1: सोंगड़ी का होशा नाला फिर किने तो मिवानी
0: आदे सोंगड़ी होशा नाला फिर हम मे टेक्स्ट ने गुमा बहेदाड़ी गानों गए भोड़ी कुत्ता के बयां को फ मे जोड़ी माना तके बयां को फ दंग एगो तुम बयां होशा नाला फिर कम गवानी नमा मे नॉन फाइलिंग फाइन ने मे अडने ए दंग अलमे मे किया नमा दुआला को मे फंसास ट्रॉफी आगे मगों आड़ एक ओम में दुआ का ए डेडलाइन ऑफ फेशिंग खुशाला तारिया हमें फंसा श्रुफिया दुआ लगा आड़ मुंदाने दें हमें गोता में 0.5% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेयेबल एवस फाइलिंग फाइन है गोतु गाड़ान दें हमें गोता अधि आड़ मुंदाने नॉन पेमेंट फाइन है बस ए पे लहू आने पेमेंट है दी थी यही हम आउटस्टैंडिंग ओम में दुआ का 0.05% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी हम वड़ा कवा दूँ मैं वाड़ा समाल कन देगा वाने सुंगड़िया बयान तो मुश्किल है तो मज़े के कोड़ा रहेंगे तो
1: आन एम अमीरा का रजिस्ट्री को फटी बिफारा तब दे तो मैं सुंगड़िया ए बयान तो मुश्किल है जहन
0: अदे मैं मैं ऐते एबा डिपेंड वे टैक्स टाइप ऑफ़ बस मिसाल का बुनन जामुं इनकम टैक्स में जीएसटी बाया ने के जीएसटी आ रजिस्टर वो मफ़ा हो कम में माह को नोने आम कम में क्वार्टर को सोशल लंच जेब बाया ने एम एक माने के ऐया कुण्डे दें रेकमेंड इतु डी रजिस्टर मफ़ा हो एकाने ए बाया होशल हालां देंगे इतमास आने गल्ली में दानी हम ए वाने गावाय दों एकां कोड़ा देंगे इनकम टैक्स सब बाला कम गावाने ना में इनकम टैक्स में शर्त तक ए बोरी आदि वाकी शर्त तक